हरि सर्वटोर मोहो सहाई दोष दो ते लो बचाई। सवैया पाए गए जब ते तुम रहे तब ते को तरे नहीं आने हो। राम रीम पुराण कुरान ने कह मत एक न मान्य हो। सिमरत सातर बे सब है बहु भेद के हम एक न जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो बखाने हो।

प्रसाद गुरुदेव अश्वरी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिर ठाकर को राख मान माहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमर परम घर पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे चाहे सदा मन अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो दिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्या भनजोग जय प्रसाद पार पटम रंडावे तिसे त्या कद अवर लुभावे जय प्रसाद सुख से सुई जय मन आठ पैर ताका जा सुख भी जय जय प्रसाद तुझ सब को मान मुक्ता को जस रसन बघान जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब दरगाह मान भावे नानक पासे ती कर जाव है जय प्रसाद रो कंचन देही निवला बो तिस राम सनेही जय प्रसाद रावला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल सिद्र ठाकै मन सरणी प्रभु ठाकुर प्रभु ताकै जय प्रसाद तुझको ना पहुँचै मन साथ साथ सिमरो प्रभु उचै जय प्रसाद पै दुर्लभ धय नानक ताकी भगत करै जय प्रसाद भूखन पैरी जय मन तिस सिमर क्यों आलस की जय जय प्रसाद असुहस असुवारी मन तिस प्रभु को कबू ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राग प्रोए प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंध बनाई उठ बैसा तिसे ते आई तिसे ते आए जो एक लख है यहाँ वहाँ नानक तेरी रख है जय प्रसाद करे पुण्य बोदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार बिहारी श्री प्रभु को साथ साथ चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद पात्र रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद पेखे विस्माद जय प्रसाद बोले अमृतसर रसना जय प्रसाद सुख सह जय बसना जय प्रसाद हस्त कर जल जय प्रसाद सुपूरन फल जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सह संभावे ऐसा प्रभु त्याग अवर कद लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार सिर प्रभु को मूल न मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साज रे मन मेरे तू तासो राज जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगाज प्रभु दया ते कमल बिगाज प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया दे मल उत्तम होए सर्वनिधान प्रभु तेरी मया आपू कछु न किनू लया जय जित

0: सुनमीता नानक बनवंता साध जना की अचार कथा सबरी साध के संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगटे सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत नवेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा भरने कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ मह समानी साध के संग गोचर मिला साध के संग सदा पर फुला साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग वे सब की रेन साध के संग मनोहर बहन साध के संग न कदू तावै साध संग अस्तित्व पावै साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनीत साध संग के सोने बैर साध के संग न बीघा पैर साध के संग नहीं को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नहीं होता साध के संग तजे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कबू तावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग वस्त अगोचर लहै साधु के संग जार सहे साध के संग बसे थान ऊंचा साधु के संग महल पहुंचा साध के संग दड़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु कह कुरबान साध के संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीज कुटम निस्तारे साधु के संग सो तन पावै जिस तन ते सब को बरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर सेवा साधु के संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गामा नानक साध के संग सबल जनामा साध के संग नहीं कज काल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलूख हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग इहां सहेला साध संग बिछड़त हर मेला जो इच्छे सोई बल पावै साध के संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रित बसै नानक उदरे साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध के संग लगे प्रभ मीठा साधु के संग घट घट डीठा साध संग पय आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा वेद न जान है जेता सुन ते तब ख्यान है साध की उमा ते गुण ते दूर साध की उमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊचते ऊची साध की शोभा मूझते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे एक बिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए ऐश्वरी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोग जैसे सूर सर्व को सोग ब्रह्म ज्ञानी के जैसे समान जैसे राज रंग खोला के तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी के तीर जेग जो मुसुदा को खोते को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का एक गुनाओ नानक ज्यो पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगाल जैसे तारे ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सदर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाई अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊजते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरथ ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दस अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह ब्रह्म ज्ञानी के ना ही तंदा ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी ओम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कवेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी के हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बट भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माय, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पेर, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कसिया ना जाय अदा कर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उतारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पात्र रूप न पेखे नेत्र, साधु टहल संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखे अपर हर, मन की बात न मन ते डर, इंद्री जित पई दोग तेर, नानक कोट मदे को ऐसा परस, वैष्णो सोचे से ऊपर सो प्रसन्न, बिजन की माया ते हुए पहन, कर्म करत होवे नेह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाशा, केवल भगत कीर्तन संग्राचा, मन धन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप जड़े अबरा नाम जपावे, नानको वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग,
1: सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मलक होवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम आत्म मैं सोधै, राम नाम सारस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद पुराण सिमरत बुझै मूल, सुख मैं जानै स्थूल, चौ वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गात होए, साध संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उतारै, पश प्रेत मुगद पाथर को तारै, सर्व रूप का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितै न पाईऐ धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगा प्रवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोजी परै, सगल संग आत्मो दास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उसोग, सदा आनंद तह नहीं बियोग,

0: प्रसन्न अष्टपदी अवनाशी प्रमन मै राख मानो की तू प्रीत त्याग तिस्ते परे नाही किश कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बख्शांद सात तेरे की चरनी पाओ नानक है मने अनुराओ मन सा पूर्ण शरणा जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जा का नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाने होर अनाद रूप मंगल साजा कै सर्व थोक सुनिए करता कै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीशर ग्रस्त मैं भोगी तिहाय तिहाय भगता सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जा की लीला की मितना है सगल देव हारे वगाए पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोही अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जिन दे जिनदास नाम ध्यावे से ते गुण मैं जा को परमाए जन्म मरे फिरा वह जाए ओज नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जाना ना रूप नाना जाके रंग नाना पेक करे करांग नाना बिद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी अहंकार नाना चलत करे खिन माए पूरे पूर्ण सब टाए नाना बिद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कट तिसके सब तिसके ठाऊं जप जप जीव है नान कर नाऊ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पताल नाम के तारे सगलकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद मैं सो जन गत पाए रूप सत जा का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान कर तू सत सजा की बाणी सत पुरख समाई समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कै हृदय प्रवेश सत निरत बूझै जे कोई नाम जबता की गात हो आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी श्रेष्ठ करने हार अवरन बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक जो तिस भावे सुवृतिया बिस्मन बिस्म पहे बिस्माद जिन बुझया तिस आया स्वाद प्रभ कह रंग राजन रहे गुर कै बचन पदार्थ लह ओए दाते दुख काटन हार जा कै संग तरह संसार जन का सेवक सुवड़ भागी जन कै संग एक लिवलागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक हो सी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार
1: दर्शन सत सत वेखण हार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सब धारी आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ बक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझण हर को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सरूप हृदय जिन मान्या करण करावन तिन मूल पछान्या जां कै हृदय विश्वास प्रभाया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया ਪੈਤੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੀ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੇ ਬਸਤ ਗੜਾਈ ਤਾਂ ਕੋ ਭਿੰਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਬੂਜੈ ਬੂਜਣ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਨੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਣ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੁਮਾਰੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰੱਖੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰੱਖੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕੋ ਨ ਪਹੁੰਚੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਾਹ ਦੇ

अष्टपदी जब अकारी कछु न दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब अपने आप आप पार ब्रह्म तमो कहां किस होवत भरम अपन खेलिया वर्तीजा नानक करण हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी जब कह हरिय गम्य अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाय तब शिव शक्त कहो किठाय जब आप आप अपनी जोत तरह तब कवन निडर कवन कत डरे अपन चलेते आप करने हारू नानक ठाकुर अगम्य अपारू अविनाशी सुखे अपने आसन तह जन मरण को कहां विनाशन जब पूर्ण करता प्रसोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अभिगत अगोचर प्रभिका तब चित्र गुप्त किस पूछत लिखा जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे अपने आप आप ये चर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा जा निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जहां निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जहां स्वरूप केवल जगदीश तह शल छत्र लगत को कीस जहां ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसे भूकम तृप्तावै करण करावन करण हारू नानक करते का नाह शुमारू जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई जहां सर्व कला आपे प्रवीन तह बेर कतेव कहां को चीन जब अपने आप आप उतार तो शगन आप शगन कहां विचार है जहां अपन ऊंच अपने आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चीरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जहां अषाल अशीद भीद समाया उहां किसे व्यापत माया आपस को अपे आदेश ते गुण का नाही प्रवेश जहां एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जहां अपने आप या पतियारा तह कौन कथा कौन सुनने हारा बहु बेअंती उचते ऊंचा नानक आपस को अपे पहुंचा जहां आप रचे उपर पंच अकार ते गुण मैं कीनो विस्थार पाप पुन तह पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै भार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान अपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक कै जहां अभगत भगत आप जहां पसरे पासार संत प्रताप दू पाका आप धनी उनकी शोभा उन्नो बनी आपै कौत करे आनंद चोज आपै रस भोगन निरजोग जिस पावै तिस आपन नाए लावै जिस पावै तिस खेल खिलावै बेशुमार

नानक कर प्रभा पै मेले सार संग मिल करो आनंद गुण गाओ पर परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ दे का करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तन कह सुआओ आठ पहर प्रपिखो नीरा मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन चे नानक फल पावो हालत पलत दोए लियो सवार राम नाम यंत्र उर धार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसै त साच परीखिया मन तन नाम जपो लेवल आए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह निभै खेव तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बौर न आवै जाहे तिस्ते दूर कहां को जाए उबरै राखन हार ते आए निरपौ जपै सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार ते जन को कोई ना पहुंचन हार सिरी उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेकत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाकी अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तान सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बस

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरा चिंद आस नित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मांग आप छोट बेनती करो साध संग अगन सागर तरो हर धन के पर लेह भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक नवारे उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जा के रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम श्लोक सार के बचन अमोलीक लाल रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोकां निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाह दवाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिनकै साथे शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभा मिलाए मिट गए बैर भय सब रहे अमृत नाम सार संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमणि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सबल होए सब ते ऊच पाए स्थान भौर न होवे आवन जान हर धन खड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् कविता समदर्शी एक दृष्टिता ये फल तिस जन के मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सोए ए निदान जपै मन कोए सब जुग मैता की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भक्त कै मन विश्राम कूट अपराध सार संग मिटै संत कृपा ते जमते छुटै जा कै मस्त कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए।

अब्बाल छुटक्यो बंधन पर कछु न होते अपाए, कहो नानक अबे उठ हर गाजो सहाय। बालो आ बंधन छुटै सब किछु होते अपाए, नानक सब के तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब ताजे गए को नानक बेहो साथ, कहो नानक बिबत मैं टेके रघुनाथ। नाम रहो साधु रहो रहो गुर गोबिंद, कहो नानक जगत मैं किन जपयो गुर मंत। राम नाम उर मैं गयो जाके समने कोय, जय सिमरत संकट मिटै दर्श तोहारो ओए। मुदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईयो साध संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पैयो जिसका सबस अतारो। जे को खावे जे को पूंजै तिसका होए उदारो। ये वस्त तजी न जाई नेतने।

प्रसाद गुरु प्रसाद राग माला राग इस पंज ब्रह्म संग लापे आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंज राग नि संग उचारही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन लेके के पे बारी है पैरों की पंचो नारी पंच मर्द सास सुना वह बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावे ही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र भैरव के गावे गायन पातरे दुधिया माल कौशक लापै संग रागनी पंचो तापै गुंड करी और देव गंधारी गंधारी सोती उचारी तनासरी है पांचो गाय मारा कहो साक संग लाई मारो मस्तंग में वारा पर बिलचण कौशक्यो बारा खोहड़ो पौर नद गाय अष्ट माल कहो साक संग लाए पुनायो हिंडोल पंजनार संग सुती उठे तान कलोल गायन तार मिलावे तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर साई सरसी लै भाज राज संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र में मंगल सहाय सरस बान आए बनोदा गावे सस बसंत कमोदा अष्टपुत्र में कह सवारी ही पुन आई दीपक की बारी का शैली पड़ मंजर ही टोटी कही अलाप का मोदी और गुजरी संग दीपक के ताव कालंका कुंतल और रामा कमल कुम चमके कमल कुसुम चमक चंपक के नामा गौरा कर कल्याणा इष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मैसरा वह गावे पांचों संग बरंगण लावे बैरारी किरणाटी तरी ही गौरी गावे आसा वरी ते पासे सिंध भी लापे श्री राग स्यो पांचों थापी सालु सारग सागरा और गुंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग कह गुंड कौंभ अमीर कसो मेरा वह गावे पांचों संग बरंगण लावे सोट गुण मलारी तुनी पुन गावे आसा गुन गुने ऊंचा सरसों पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचों चीनी बैरा दर गजदर के दारा जबली तर नड़ो जल तारा पुन

चरण बोहिथ प्रभ देत से भादुएं नरक न पाइए। गुर रखण वाला हित से भादुएं

नानक पूरे भाग सतगुर मिले, सुख पाए जोग चार। महला तीजा, क्या गबरू क्या बिरद है, मन मुख तृष्णा भुख न जाए।

सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ निरंजना मन चाओ। सिखी सिखिया गुरु विचार नदरी कर्म लगाए बार कोलू चरका चक्की चक थलवर ओले बहुत अनंत लाटू मदानिया नगा पंखी पौंदिया लैना सा सुवे चा

सतगुरु ने पूछ के बैरे करे निवास ससब न होए दारू पाप कडे तो नानक बखाने बेनती।

जुगो जुगा टल चबर शतर तख्त दे मालक हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु बाणी के बोहित अमृत के दाते दसा पातशाहियां दी जोत साहब सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तों सज्जे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे सन्मान योग सत्कार योग सतसंगी जनों सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है। आप सब गुरदेव दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के सतगुर की अमृतमयी बाणी दे कीर्तन

चल, पता नहीं करंट पीछे नहीं आएगा, चलायो देख के, यही तो चल रहा। सतनाम श्री वाहेगुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।

अमृत ताज बिख संग रह करते आप खोया। गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया रसना हर साध आया। शब्दे ही नाउ उपजै शब्दे मेल मिलाया। बिन शब्द सब जग बोराना बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सो हर पुरख अगम है कहो कित बिद पाइए। तिस रूप नरेख अदृष्ट कहो जान क्यों त्याइए। निरंकार निरंजन हार अगम क्या कह गुण गाइए। जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइए। गुरपुरे वेखा लिया गुर सेवा पाइए। गुरपुरे वेखा लिया गुर सेवा पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूह संगत का धन्यवाद शुकराना अकाल पुरख वाहिगुरु का जो आप हर रोज सतगुरां की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के सवेरे शाम हाजरियां भरदे हो। अज दिन सोमवार नूं बीबियां वल्लों रल मिल के सतगुरां की रब्बी बाणी दे उटासरा परसदा होया तुरकी बाणी दे कीर्तन किए जाते ने। तो सतगुरु कृपा करे सभना नूं चढ़दियां कला तंदुरुस्तियां बख्शिश करन ताकि अपने दर घर की सेवा लैंदे रहन। तो इस तरह कल नूं मंगलवार नूं फिर बीबियां वल्लों श्री सुखमणी साहब दे पाठ अते कीर्तन हुंदे ने। तो सतगुरु सच्चे पातशाह दी कृपा है आप जी दे अगे भी बेनती है आप जी हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करिया करो। इहदे नाल ही अज गुरद्वारा साहब विखे बच्चों का गुरमत कैंप जिहड़ा है वह प्रारंभ होया है। तो तकरीबन 80-90 दे करीब जिहड़े बच्चे ने वह गुरमत कैंप अटेंड कर रहे हैं। तो आप संगतां विच्चों सेवक परिवारां विच्चों जे बच्चों की किसी ने सेवा करनी होवे कोई फ्रूट जां होर लंगर आदि द्वारा तो आप जी कर सकते हो। तो ये कैंप जिहड़ा है ये 17 तरीक तो अज तो लैके तो 22 तरीक तक जिहड़ा है ये कैंप इदां चलना है। सो जिस विच बच्चों गुरमत दीआं विचारां गुरबाणी गुरसिख इतिहास जिहड़ा है वह वलंटीयर जिहड़े ने सेवादार जिहड़े ने वह सरवण कराउंदे ने। तो आप संगत नूं बेनती है कि आप जी जिहड़ा है वह सेवावां करके अपना योगदान पा सकदे हो। तो सारिआं दा धन्नवाद। कड़ाह प्रसाद की देग वरत रही है गुरु के लंगर तैयार ने आप जी ने जान लग्या लोड़ मुताबक छाके जाने जी। इत्थे ही इस दीवान की समाप्ति है। सभना का धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।